वहमो गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

अग्नलसको सज्याजो नेपाले स नेपाले ज्याझो छेनिना चुनादिल जिगुना खरसमिला आदासा संविधान संशोधन बहस पत्र तयारी आयोग कार्यदल 2082 तो सरकार पाखे संविधान संशोधन या लागि दका चाहिँ छलफल या विषय दका चाहिँ विशेषना त नागरिक समाज व विभिन्न संघ संस्था या त छयागु पौ बारे सोझो खला नेपाल सरकार आयोग संविधान 2072 देखे त लगभग नेदशी व्यापक ई कालम 2064 साल निचे दिएको संविधान 2072 साल यति नै प्रजलले असोज 3 गते जारी जुल एजिया असोज 3 या त संविधान दिवस कथा चिस हना भइसना तर ठोस संविधान संशोधन या त आयोगको सरकारले जम्मै नेहेनु नेहेद देका दिएको संविधान या त संशोधन या त नेहेनु या ई बिया चाहिँ ठो पत्र त छोगो जुल होला नेहेनु ई रेगुलासा जेट 8 गते पत्र छोयला अनि जेट 15 गते चाहिँ संविधान संशोधन यो सुझाव त दु छोयो चिरका चाहिँ छुए मागो जुल अले अनसै जम्मा नेगो क्याटेगोरी दु छौ शासकीय स्वरूप अट्टगा दैगु आयोगको पूर्ण संसदीय व्यवस्था ठिक जो कि त चाहिँ संशोधित संसदीय व्यवस्था मागो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति जीव कि वा प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जीवको अझ अझको खत पनि अले विज्ञ मन्त्री जीवको व्यवस्था वा सांसद मन्त्री मजुको व्यवस्था मन्त्री परिषद गठन वा मन्त्रीको जवाफ दे यता आदि चाहिँ शासकीय स्वरूप जुल निर्वाचन प्रणाली अधिय खुगु विभिन्न अनखतदु जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित व चाहिँ पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित जुगु निषेकया अले नोटा एर्गारे चाहिँ यदि छिटो चाहिँ चुनाव यसरी त उम्मेदवार पिन्त थगु क्षेत्र भोट बिमासी महोसा भोट बिमुखु र गाछुए दुगु निषे राइट टु रिकल छि भोटे रुगला तर दु भोट चाहिँ द लिटमाल दास लिटकागु त निषेकया विदेशी चोपी नागरिकते त मताधिकार बिगु ख त कन अन दुगु जुल अले मेगुर गादैगु प्रदेश सम्बन्धी ख त अझ यहाँ संघीयता सम्बन्धी ख संघीयता आजुन सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह यो जो ख त मतलब अनि चाहिँ गेना प्रशासनिक वा वित्तीय संघीयता गेना प्रभावकारी यागो ख निसेकया प्रदेश यो सम्बन्धी प्रदेशी संख्या कुल त्यो प्रदेशी संरचना मतलब प्रदेशी निर्वाचित मुख्यमन्त्री त्यो कि छुया र गाजाको ख त जुल स्थानीय तह सम्बन्धी अलि सानो दलीय व्यवस्था यहाँ कि दल विहीन आउ कि स्थानीय तह त गेना उत्तरदायी यागो निसेकया फोरेको चाहिँ न्यायपालिका न्यायपालिकालाई जम्मा झिन छगु विषय दुख निकाल्न पोइन्ट त मलाई दुखानी जस्तै अब प्रधान न्यायाधीश गेना वा निर्वाचन वा मनोनीति आयोगलाई छुयाउ निसेका यो पोए खत दुगाले संवैधानिक निकाय खत दु संवैधानिक निकाय संख्या गुले त्यो पदाधिकारी गेना त्यो पदाधिकारी त गेना उत्कृष्ट यागु मतलब महाअभियोग स्वित त्यमा सबै छुयागु निसेकया अलि मेघ विविध विषय दगा संसदीय अधिवेशन त गेना सुचाली दियागु गैर आवासीय नेपाली नागरिकता वा उनी अमिगु अधिकार जनप्रतिनिधि पिनुगु योग्यता उमेर हद गुले त कसाई अपि धन्य दैगु मतलब अझको यो कुरा खन्सेकया मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था निसेकया अलि मेघु सातौँ दियो विज्ञ त्यही त मेघु विषय हेरेका चाहिँ त्यो त हुन्छ जम्माइना चाहिँ नेगो क्याटेगोरी 46 प्रश्न त्यहाँ चाहिँ छोइरहेको जुल अलि थुकी नेवा दे दबुलिन छगु सहल ज्याजो गोसागो जुल अलि व सहल ज्याजो या ढुङ्गा वसै 12 गते गोसागो जुल सहल ज्याजो या ढुङ्गा 15 गते नेपाल सरकार या त चाहिँ छोगुदो अलि छुकी चाहिँ नेवा समुदाय पाखे चाहिँ गोजागो सुझाव गर्न लिएका धेबले नेवा समुदाय राष्ट्रिय सङ्गठन खनेवा दिए दबु चाहिँ नेवा समुदाय मङ्का सरोकार व सुझाव कथ शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली सङ्घीयता न्यायपालिका संवैधानिक निकाय व मेमेगु सम्बन्धित विषय लिएर सुझाव छोगो जुल दे दब्लिन ऐतिहासिक भाषिक सांस्कृतिक वा आदिवासी पहिचान या लिदोस प्रदेश या पुनः सीमाङ्कन याना नेवा स्वायत्त राज्य या सुनिश्चितता या मागु माग यागुदु यसै प्रदेश प्रमुख उगुहे प्रदेश या बासिन्दा जुगु प्रावधान देखे त नदाहागु जुल अति सुझावे पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली या व्यवस्था जुइ मागु सङ्घीय संसद प्रदेश सभा व स्थानीय तहले आदिवासी जनजाति या न्यूनतम प्रतिनिधित्व कोटा सुनिश्चित जुइ मागु राष्ट्रिय सभा आदिवासी जनजाति व भाषिक समुदाय समानुपातिक व समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित याना बहुजातीय प्रदेश सभा देखि मागु व राज्य या फुक्क निकायले जातीय संख्या या आधारे समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य यातन सुझाव दिएको जुल सँगै अत्यधिक शक्ति केन्द्रित जुगु खन यथासे सुझावे प्रदेश व स्थानीय तह या त अवशिष्ट अधिकार सहित वास्तविक स्वायत्तता बितन माग्यागुदु सङ्घ प्रदेश व स्थानीय तह मातहत विशेष संरक्षित व स्वायत्त क्षेत्र या संरचना या व्यवस्था या मागु स्वायत्त क्षेत्र विशेष क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्र निस्वना अनिवार्य कार्यान्वयन याना राजनैतिक अधिकार
अधिकार अपेक्षकु व जिल्ला समन्वय समिति खारिज यामागु सुझाव न दुथ्याको जुल उक्त हे सुझाव स्थानीय तह या त मा भए पाखे शिक्षा संस्कृति व सम्पदा संरक्षण पूर्ण अधिकार दिमागु सांस्कृतिक व धार्मिक सम्पदा या व्यवस्थापने स्थानीय समुदाय त स्वायत्त अधिकार बीमागु खन दुथ्याका त अगुदु न्यायपालिका सन्दर्भे फुक्क तह या अदालते मा भए छेरा बुलाय अधिकार सुनिश्चित यामागु व नेपाल वासनापा आदिवासी भाय शिक्षा प्रशासन न्याय व सार्वजनिक जीवन छेरे त अधिकार सुनिश्चित यामागु सुझाव न नेपाल सरकार या त बिगुदु पूर्ण धर्मनिरपेक्षता या सुनिश्चित यामागु संवैधानिक आयोग आदिवासी जनजाति या अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित यामागु व भाषा आयोग या त संवैधानिक आयोग या हे हैसियत सम्बन्धित धलखे दुख्याकेगु अलि सरकारी सेवा बहुभाषिक दक्षता या त योग्यता व प्राथमिकता या आधार देके त नापगुथी परम्परागत सामुदायिक भूमि व सांस्कृतिक सम्पदा स्थानीय समुदाय या मङ्का अधिकार सुनिश्चित यागु लगायत या सुझावमा बिगुज ल शुक्रबार नेपाल सरकार या त सुझाव छुइन्य देदवली समुदाय या तरे सहलयना सुझाव सहित अवधारणा पत्र तयार यागु ख अलि अति हे पद्मरत्न लुमन्ती गुथी पाखे नेपाल सरकार या प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदीय कार्यालय संविधान संशोधन बहस पत्र तयार यागु कार्यदल 2082 या सचिवालय या त संविधान संशोधन या त कया रा बिगुदु उथि बिगुरा या त कया अध्ययन जुवासँगको ख कार्यदल सचिवालय लिखित जानकारी बिगु ख तागुदु पद्मरत्न लुमन्ती गुथी पाखे नेपाल सम्बद्ध राष्ट्रिय सम्बद्ध जिमागु सरकारी ज्याखे खस भाषा नेपाली बाहेक मेमेगु राष्ट्रिय भा व लिपियान छेलिमागु जानकारी सुझाव बिगु ख उक्त हे संविधान संशोधन जुइ मुजुगु थे गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समावेशिता व संघीयता नेतना तगुदु शासकीय स्वरूपे जाति गत प्रदेशगत व लैङ्गिक रूपके झोलीका प्रतिनिधित्व जुइगु कथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लिगु उपराष्ट्रपति समावेशी जातीय सभा या अध्यक्ष जुइगु प्रत्यक्ष निर्वाचित जनता प्रति जवाबदेही कार्यकारी प्रधानमन्त्री जुइगु व विज्ञ मन्त्री पि जुइगु प्रधानमन्त्री प्रति जवाबदेही जुइमागु व अफल झिनपेम दुजय मिसा व मिजा बराबरी ल्याखे जातीय समावेशी मन्त्रीमण्डल जुइमागु सुझाव नगुथि बिगु छ लगादाइबले त न न्युगो फरक फरक निवात पाखे वंगु जुल अले ठुके चाहिँ न्युगो फरक हे खत जुगु जुल आथन त पद्मरत्न लुमन्ती गुथि पाखे वंगु खले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री या ख वंगु दुसा दे दवल वंगु ली चाहिँ त प्रत्यक्ष कार्यकारी या ख मनो लुंगु चाहिँ मधु अनला अले आयागु हे व्यवस्था या त पचा चाहिँ बहुल जाति गेना चाहिँ अन स्वाकेगु ख म वगठ मागु तर निर्वाचन प्रणाली चाहिँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू या मागु सँगै थका चाहिँ वगु जुल अले नाप जुन स्थानीय निकायले आज दलित थका मिसातेगु कोटा दुसा गन गन अन स्थानीय आदिवासी तेगु मखला न प्रतिनिधित्व अफवदु अन चाहिँ आदिवासी तेगु प्रतिनिधित्व स्थानीय तहले न वनि मागु खत जुल आथो चाहिँ आ दकों बिगु सुझाव छ जुल आथो सुझाव सरकार गुली मननीय मयै आवला सरकार जुन ड्राफ्ट संशोधन संविधान संशोधन न ड्राफ्ट गा पिनै उबले जको छिगु खत न लाके मला सुइगु जुल उबले चाहिँ बालक सोया यदि छिगु एजेन्डा त मला सा हाक्न न दबा बिगु ज्या जुइ अले वयालि पाजको संविधान संशोधन पाखे नि तुलिदासे जाजो सा हाक्न छि सा मेगु मेसवा